तो सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे।

यीशु की सामर्थ्य तक आई। अरे सुनो सुनो, मुझे शिफा मिल गई, मुझे शिफा मिल गई। देखो देखो,

कल चौदहवीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा. यस, इट वॉज द 14th मून नाइट लास्ट नाइट, एंड द एंटायर नाइट वी बीन स्पीकिंग अबाउट यू. एंड ऑफ कोर्स दैट वॉज जगजीत सिंह साहब. बड़ी बेहतरीन अंदाज में इस गजल को पेश की है. एंड यस, शुक्रन टू ऑल आवर नॉलेजेबल गजल लिसनर्स आउट देयर. प्रोफेसर दौलत रामदास लीडिंग द पैक एज यूजुअल, वन ऑफ आवर रेगुलर्स. एंड माशाल्लाह ये गजल को अच्छी तरह जानते हैं. एंड ऑफ कोर्स ही इज वेल इन्फॉर्म्ड व्हेन इट कम्स टू द गजल एंड द आर्टिस्ट इन द गजल वर्ल्ड एज वेल. एंड देन वी हैव रिकी आवर नाइट आवल वंस अगेन, आल्सो अनदर रेगुलर ऑफ आवर्स. एंड आवर सिस्टर तरहाना फ्रॉम जोहान्सबर्ग, थैंक यू सो मच मैन. एंड प्राण महावीर ऑफ टुगेदर रेल. एंड देन दिस कैस, यस कैस ऑफ केप टाउन, शी लव्स अ गजल. दिस चाइल्ड, शी रियली लव्स अ गजल. थैंक यू सो मच कैस फॉर योर काइंड वर्ड्स अगेन. डिकी मैगराज क्लिफडेल के रहने वाले हैं, टुगेदर विद हिज एंटायर फैमिली ही इज ऑल्सो ट्यून्ड इन. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स अगेन, डिकी मैगराज. How can I leave Anil Ramsarup of Benoni? Yes, this brother as well is another one of those well-informed when you come to the ghazal world. Thank you so much, Anil Ramsarup. Susan Mudley, together, was also listening through. And I'm sure together we're all going to have a beautiful evening. It's time for our Suno Seeko segment of the program. Let's start off with a few words, poetic words. Kurbat. Kurbat means closeness. You know, the desire to be close to you. Kurbat, kurbat, Q-U-R-B-A-T, kurbat. Justiju, I think I've done this word once before. Justiju means to search, or, you know, longing for somebody is justiju. Diwanigi, we all know, is madness or frenzy. Typically used to describe love that borders on obsession. Wafa, of course, is faithfulness, loyalty or devotion. Bewafa is just the opposite. And firakh means emotional distance or yearning caused by being apart. That is firakh. Hasrat is an unfulfilled desire of deep longing of what cannot be. And then tasawwur. Tasawwur means to imagine, imagination, tasawwur. Shabnam, of course, is the dewdrops that we get in the mornings or late at night. Shabab is the prime of youth or beauty. Shabab means when you're in the prime of youth. Dilkash is heart-pleasing, enchanting or beautiful. Mehtab is the moonlight. Mehtab. Nigah is to gaze, look or glance. And Hayat is existence of life. Muntazir means patiently waiting or anticipating someone's arrival. Main aapka muntazir ho, I'm waiting for you. Safar is to journey or travel or wandering. Main safar pe ho, I'm traveling. Fana is to totally surrender or lose oneself. Main fana ho gaya, ho chuka ho aapki mohabbat mein. That is fana. Let's do one line of poetry. Zindagi ne ek cheez zarur sikhai hai. जिंदगी ने एक चीज जरूर सिखाई है कि अपने में खुश रहना और दूसरों से कोई उम्मीद ना रखना. जिंदगी ने एक चीज सिखाई है कि अपनों में खुश रहना और दूसरों से कोई उम्मीद ना रखना. लाइफ हैज टॉट मी वन थिंग दैट यू नीड टू बी हैप्पी विद योरसेल्फ, डोंट रिलाई ऑन अदर्स टू बी हैप्पी फॉर यू. हाउ ट्रू. जिंदगी ने एक चीज जरूर सिखाई है, एक अपने में खुश रहना और दूसरों से कोई उम्मीद ना रखना. और दूसरों से कोई उम्मीद ना रखना. लाइफ हैज टॉट मी दैट यू नीड टू बी हैप्पी विद योरसेल्फ, डोंट रिलाई ऑन अदर्स टू बी हैप्पी फॉर यू. मेरे दिल की हर धड़कन में तेरा नाम है. तन्हाई मेरी सुबह और तू ही मेरा शाम है. मेरे दिल की हर धड़कन मैं तेरा नाम है, तू ही मेरा सुबह है और तू ही मेरी शाम है. तेरे बिना जिंदगी अधूरी है, तू ही मेरा मुकम्मल जान है. एवरी बीट ऑफ माई हार्ट स्पीक्स योर नेम. यू आर माई मॉर्निंग एंड माई इवनिंग्स. लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट यू. यू आर द अल्टीमेट लव ऑफ माई लाइफ. मेरे दिल की हर धड़कन में तेरा नाम है, तू ही मेरी सुबह काम है.
تیرے بنا زندگی ادھوری ہے، تو ہی میرا مکمل جان ہے. مکمل از کمپلیٹ، ادھوری از ٹو بی یو نو لیفٹ ہوپ لیسلی الون. اینڈ دین آف کورس شام از ایوننگ، صبح از مارننگ، دھڑکن از ہارٹ بیٹ. آئی ایم شور دیٹ شوڈ سفائس فار دس ایوننگ. لیٹس لسن ٹو طلعت عزیز صاحب.

0: शाम सवेरे नैन बिछाकर राहत खू में साजन के यस हु एल्स बट द लेट ग्रेट नुसरत फतेह अली खान साहब. शुक्रिया फातिमा पट एलिजबेथ आवर सिस्टर्स. वेल वेल वेल ट्यून शी गॉट अ ईयर टू द ग्राउंड एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. ऑल्सो कैस, यस कैस इज एंजॉइंग द म्यूजिक एज यूजुअल. जाकिरा अनदर वन ऑफ आवर वेल नोन लिसनर्स फ्रॉम जोहान्सबर्ग एज वेल. शुक्रिया सेंट्रल जोहान्सबर्ग. एंड देन वी हैव रुवेदा ऑल्सो ऑफ केप टाउन दैट हैज ट्यून्ड इन एंड ऑफकोर्स enjoying the ghazals. Like, it's you people out there, it's you the listeners that make the show, and we are proud that you are enjoying this show. Don't forget to tune in immediately after the 7 p.m. news. Rivaj Soni will bring you Talk at 7.
1: Hi South Africa, it's Carol Shabalala, your first lady of sport. If you appreciate world-class sport and a great occasion, the Hollywood Bets Durban July is worth your attention. The theme for 2026 is Country Allure, which sees the rustic style of the countryside meet the cosmopolitan cool of the city. On Saturday, 4 July, it all comes together at Hollywood Bets Greyville, Africa's greatest horse racing and social event. I'll see you there.
2: SPAR is giving you the chance to win your share of over 400,000 Rand in Superfan prizes when you spend 650 Rand or more and buy any three participating products, like 2-litre Coca-Cola, regular only. Buy two for 47 Rand, save 11 Rand, or 400 gram Coop baked beans and tomato sauce, excluding light and variants. Buy two for only 30 Rand, save 10 Rand. Prices valid from 22 June till 7 July, while stocks last, only at SPAR. T's and C's apply.
0: अफसोस वक्त अभी इजाजत नहीं दे रहे, बल विदा कहने का वक्त भी आ चुका है. जिंदगी ने अगर हमसे वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. उस वक्त तक जिंदगी को संभाल के रखना, जिंदगी मौत की अमानत है. जॉइन मी ऑन संडे इवनिंग फॉर कवाली अवर एट 9 p.m. في امان الله. خدا حافظ. انا مونی بی پلینگ اوٹ ود دی غزل بتلت عزیز صاحب, اور مجھے یقین ہے آپ سب کو پسند آئے گا.

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।